0: करे।
1: ना मैं समझा ना मैं जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अबाग लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: UK. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Bye for now. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
1: ZTV HD पर देखिए तुम से तुम तक।
2: बस कुछ ही दिन और रहो, फिर हमारा भी मंडप सजेगा।
1: क्या इन दोनों के प्यार को लग जाएगी किसी की नजर?
2: आर्यभट्ट अगर नील और सिमरन की शादी होते देखना चाहता है तो सभी के सामने खुल के बता तू कौन है और तूने क्या किया है।
3: मैं ही राजीव भाटिया।
1: तुम से तुम तक रोज रात 8:30 ZTV HD पर अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
4: This is Sunrise, the UK's biggest.

0: जी टीवी HD पर देखिए तुम से तुम तक।
1: बस कुछ ही दिन और रहो, फिर हमारा भी मंडप सजेगा।
0: क्या इन दोनों के प्यार को लग जाएगी किसी की नजर?
2: आर्यभट्ट अगर नील और सिमरन की शादी होते देखना चाहता है तो सभी के सामने खुल के बता तू कौन है और तूने क्या किया है।
3: मैं ही राजीव भाटिया।
0: तुम से तुम तक रोज रात 8:30 ZTV HD पर, अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
4: It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
5: Get that Toyota electric feeling with the all-new, all-electric Toyota Urban Cruiser. Available with 0% APR representative and £1,500 deposit contribution. And save £1,500 with the Toyota electrified saving. Visit your nearest Toyota center. Price from $299.95. Available on Toyota PCP when financed through Toyota Financial Services by 30th of June 2026. Optional final payment. Indemnities may be required. See website conditions apply.
6: Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station. Call the Sunrise Radio sales team today on 020 8574 7777.
7: Hey, it's Sanjay Sanj. Catch me on the weekends from 1 o'clock.

मुझ में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को।

0: Spirit Piri presents the icon and living legend Sonu Nigam live in concert. The Revolution Tour comes to London on the 23rd of August at the OVO Arena, Wembley. Get your tickets now to see Sonu for one show only in the UK. Tickets available from AXS and Ticketmaster. Powered by RGB in association with Berico Food Distribution Limited and Dairy Valley. Come see Sonu Nigam live, brought to you by Rock On Music. It's a TCO production. Catering partner Madhus, hospitality partner The Taj Group, radio partner Sunrise Radio.
1: ZTV HD par dekhiye Tumse Tum Tak.
2: Bas kuch hi din aur rano. फिर हमारा भी मंडप सजेगा।
1: क्या इन दोनों के प्यार को लग जाएगी किसी की नजर?
3: आर्यभट्ट अगर नील और सिमरन की शादी होते देखना चाहता है तो सभी के सामने खुल के बता तू कौन है और तूने क्या किया है।
2: मैं ही राजीव भाटिया।
1: तुमसे तुम तक रोज रात 8:30 ZTV HD पर अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।

0: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order for the 10th of May and enjoy 20% off your order. Simply use the code EARLYEEDSAVER online at ambala.co.uk or quote it in store to redeem. Choose from beautiful gift tins, delicious rasmalai, motijur laddus and all your Ambala favourites. Don't miss out. Pre-order today and make this Eid extra sweet with Early Eid Saver. Offer ends 10th of May. T's and C's apply. See ambala.co.uk.
1: ZTV HD पर देखिए तुम से तुम तक
2: बस कुछ ही दिन और रहो फिर हमारा भी मंडप सजेगा
1: क्या इन दोनों के प्यार को लग जाएगी किसी की नजर
3: आर्य भारत अगर नील और सिमरन की शादी होते देखना चाहता है तो सभी के सामने खुल के बता तू कौन है और तूने क्या किया है
2: मैं ही राजीव भाटिया
1: तुम से तुम तक रोज रात 8:30 ZTV HD पर अवेलेबल ऑन स्काई 707 स्काई ग्लास 714 वर्जिन मीडिया 809 BT 394 एंड Z5 ऐप
4: द सनराइज ब्रेकफास्ट शो ब्रॉट टू यू बाय वेल बेबी एंड वेल किड आइडियल Vitamins for children from Vitabiotics, the UK's number one vitamin company. Available from pharmacies, supermarkets, and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.
5: This is the UK's biggest Asian mix.

0: HD पर देखिए तुमसे तुम तक।
1: बस कुछ ही दिन और रहो, फिर हमारा भी मंडप सजेगा।
0: क्या इन दोनों के प्यार को लग जाएगी किसी की नजर?
2: आर्यभट्ट अगर नील और सिमरन की शादी होते देखना चाहता है तो सभी के सामने खुल के बता तू कौन है और तूने क्या किया है।
1: मैं ही राजीव भाटिया।
0: तुमसे तुम तक रोज रात 8:30 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
3: एडवर्टाइज ऑन द UK's नंबर 1 कमर्शियल एशियन रेडियो स्टेशन। कॉल द सनराइज रेडियो sales team today on 020-8574-7777. The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Well Baby and Well Kid. Ideal vitamins for children from Vitabiotics, the UK's number one vitamin company. Available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com. Sunrise
4: Radio. The thought of the day with Citybond Travel, with over 50 years of turning dream holidays into reality. From flights and holiday packages to honeymoons, cruises and escorted group tours, enjoy special deals to India, Dubai, Japan, Vietnam, Cambodia and more. Call Citybond Travel on 0208-206-3620 or visit citybondholidays.co.uk.
5: Kajal Agarwal said, apart from hard work and being in the right projects, you need to reinvent yourself. I'd be bored doing the same thing over and over, and the audience wouldn't like it too. The trick is to break that monotony.
3: This is Sunrise, the UK's biggest.

0: मंडप सजेगा।
1: क्या इन दोनों के प्यार को लग जाएगी किसी की नजर?
2: आर्यवर्धन अगर नील और सिमरन की शादी होते देखना चाहता है तो सभी के सामने खुल के बता तू कौन है और तूने क्या किया है।
3: मैं ही राजीव भाटिया।
1: तुम से तुम तक रोज रात 8:30 ZTV HD पर अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
4: द सनराइज ब्रेकफास्ट शो ब्रॉट टू यू बाय वेल बेबी एंड वेल किड, आइडियल विटामिन्स फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम Vitabiotics, द UK's नंबर वन विटामिन कंपनी, अवेलेबल फ्रॉम फार्मेसीज, सुपरमार्केट्स एंड Vitabiotics.com. फॉर नंबर वन वेरिफिकेशन सी Vitabiotics.com.
5: The thought of the day with Citybond Travel. With over 50 years of turning dream holidays into reality. From flights and holiday packages to honeymoons, cruises and escorted group tours, enjoy special deals to India, Dubai, Japan, Vietnam, Cambodia and more. Call Citybond Travel on 0208-206-3620 or visit citybondholidays.co.uk.
6: Kajal Agarwal said, apart from hard work and being in the right projects, you need to reinvent yourself. I'd be bored doing the same thing over and over, and the audience wouldn't like it too. The trick is to break that monotony.
4: This is Sunrise, the UK's biggest.

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो,
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जल ले तो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हट जाए
1: हो जाए।

0: Amichana.
1: Trust me, I'm only giving you words of wisdom from my own experiences.
0: Next on Sunrise. Sunrise Radio.
2: Citybond Travel, with over 50 years of turning dreams into unforgettable journeys. From flight-only bookings to tailor-made holidays, honeymoons, safaris and escorted group tours, Citybond Travel does it all. Discover special offers to India, Dubai, the Maldives, the Caribbean, Africa, the Far East, South America and many other destinations. Call our Citybond Travel specialists on 0208-206-3620 or visit citybondholidays.co.uk. Citybond Travel, your world. World, your journey at all protected.
3: अब अमर कर्ज से आजाद है क्योंकि हम साथ हैं। हम प्रिया के साथ हैं उसे एक बेहतर और सही घर दिलाने में। हम मुहिम चला रहे हैं ताकि रहीमा जैसे लोगों पर एनर्जी बिल एक बोझ ना बने। हम हैं सिटीजंस एडवाइस, एक इंडिपेंडेंट चैरिटी, हर जरूरत पर मुफ्त और भरोसेमंद सलाह जो सच में काम आए। हम साझा चुनौतियों पर काम करते हैं एक संतुलित समाज के लिए। हम हैं सिटीजंस एडवाइस, The People's Champion. Search करें Citizens Advice.

0: Coming up, it is Bukhar with Arub Khan and Biryani, along with this one. Nana with Mickey Singh featuring Junita Gandhi. Coming your way, keep it locked.
1: Saturday nights on Sunrise, brought to you by ZTV's Tum Se Tum Tak. Daily at 8:30 p.m. on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
2: You'll be sport for choice at Almorad, Britain's largest independent ceramic tiles importer and retailer. Visit our stunning showrooms across London and take advantage of our huge range of tiles at great prices, including clearance pallets with up to 80% off. Also, bathrooms, showers, taps, a range of vanity units and modern accessories. Open to trade and public with trade discounts. Delivery service available. Almorad, with branches throughout London. Visit al-morad.co.uk.
3: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली। ओपन ट्यूसडे टू संडे।
4: साला कुल का दीपक समझे थे, फुलझड़ी निकला।
3: 15th मई को प्रजापति पांडे लेकर आ रहे हैं फुल ऑन कंफ्यूजन और डबल धमाका। कौन पत्नी कौन वो, सवाल बहुत है, आंसर्स और भी एंटरटेनिंग। पति पत्नी और वो दो परिवार के साथ देखिए 15th मई से सिनेमाज में।
1: Saturday nights on Sunrise, brought to you by ZTV's Tum Se Tum Tak. Daily at 8:30 p.m. on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
5: This is Sunrise, the UK's biggest.

0: Weekdays with Shabnam Sahi.
1: That is what makes you a superstar.
0: Weekends with Amit Channa.
2: That is my opinion. Whether you agree or not, it's totally up to you.
0: This is Sunrise Radio.
3: दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा